0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज।
1: यो कृष्णसार FM
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।

0: कौशल्या मेमोरियल हस्पिटल द्वारा एक महिने फ्री ओपीडी सेवा शुरू भएको छ।
1: कोहलपुर 9 हवलदारपुर स्थित कौशल्या मेमोरियल हस्पिटलमा स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म एक महिनासम्म फ्री ओपीडी सेवा सञ्चालन भएको छ।
2: प्रदान गरिने सेवाहरू:
0: गर्भवती जाँच सेवा, महिलाको तल्लो पेट दुख्ने समस्या, पाठेघरमा मासु पलाएको समस्या, यौनी चिलाउने समस्या, गन्नाउने सेतोपानी बग्ने समस्या,
3: एप्टोपिक प्रेग्नेन्सी सम्बन्धी समस्या, निसन्तानपन सम्बन्धी समस्या, महिनावारीमा गडबडी,
0: पाठेघरमा हुने क्यान्सर जाँच तथा सम्पूर्ण स्त्री तथा प्रसूति सम्बन्धी समस्याको चेक जाँच तथा उपचार गरिन्छ। यही श्रावण 15 गतेदेखि भाद्र 15 गतेसम्म फ्री ओपिडी सेवा सञ्चालन हुने भएकाले सबैमा जानकारी गराउँदै सेवा लिनका लागि अनुरोध छ।
1: सम्पर्क कौशल्या मेमोरियल हस्पिटल, कोहलपुर 9 हवलदारपुर बाँके। सम्पर्क फोन नम्बर 081-41-40-07 र 98-482-63-399।
4: बीर डेंटल
5: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमाडौं तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
6: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
5: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक, भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
6: फोन नम्बर 081-532-375।
7: ओहो, आज डाइहा नै मजा लागत हो, मजासे दवाई करेला कहटु।
8: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइ न, पश्चिम नेपालके अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगञ्जमा मिलत।
7: ए बाट ठिक कैलो, साच्ची कि अस्पतालमा का सुविधा मिलत त?
8: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाउ उपचार गर्न सँगै एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक अपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पाजाइत। छोट बच्चा हो, भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत।
7: ए ओसिनो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह।
8: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगंज, सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081-535-717। कान्ति आरोग्य अस्पताल, अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
9: भैया, बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
10: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहें, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए, वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होता है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
9: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
10: सुनो, हुआ औरतन के बाँझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होत है, और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
9: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक, दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहे दिल हुआ जाए।
10: मेडिकेयर क्लिनिक, नेपालगंज उप महानगरपालिका वाडा नंबर 11, बीपी चौक के नेरेन, उप महानगरपालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97-46-11-786, 98-224-92-377।
11: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक, मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
4: खुशी के खबर, खुशी के खबर। हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा डेटी आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा डेटी आयल बा। ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा डेटी रलेक जानकारी कराईटी।
12: जस्तक सर्जरी के सक्कू उपचार, प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कू उपचार, नसा व हड्डी रोग के सक्कू उपचार, मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कू उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाटी रोग के सक्कू उपचार सेवा देती आयल बा।
4: ओस्तक सुगर, ब्लड प्रेशर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो संबंधी सक्कू उपचार, पैथोलॉजी लैब सेवा, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और सक्कू सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी।
12: नोट, ई अस्पताल कार्यरत सक्कू डाक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज, संपर्क नंबर 081536465, 98239806665 ओ 98482804465।
13: समय बदलियो, पुस्ता फेरियो, साथ साथ उस्तै छ।

0: Jonta Kibo. 5 doshak dekhi.
1: कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज कृष्णसार जसिन तेज

0: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
1: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ENT विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ENT कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल ईदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल ईदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580-30479 र 98480-21380।
2: ओहो, आज डाई हाँ नै मजा लागत हो, मजा से दवाई करे ना कहतु।
3: ये तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाई ना, पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
2: ए बात तो ठीक कहलो, साच्ची की अस्पताल में का का सुविधा मिलत त?
3: वहाँ त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक OPD सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाव उपचार करना संगे NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाए। छोट बच्चा हो, भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाए।
2: ए ओसिनो कला से वहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह।
3: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081535717। कान्ति आरोग्य अस्पताल, अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
2: कान के समस्या बा, उपचार करायला कहाँ लैजिना हो?
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन, वहाँ त अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुइत। ओतरकेल कहाँ हो? वहाँ तो लम्बा समय से कान पक्ति रहना, जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान खजोइना, कान कम सुन्ना, कान दम्मा हुइना बिरामी के उपचार और परामर्श वो लम्बा समय से कान पक्ति रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुईट। वाकर संगे कान कम सुन्ना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता वो महंगा ढेर प्रकार के कान के मेसिन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाएत। जस्ते BTE, CIC, RIC जैसिन मेसिन फे वहाँ मिलात।
2: ए ओसिड हो कला से बुडु हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ता?
3: एकदम समय मा उपचार करेले से उपचार संभव बा। बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ, फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने, राप्ती रोड बाँके। संचालक पूरण चौधरी। सम्पर्क नम्बर 98 84 20 697, 98 85 23 697 ओ 98 014 83 697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी।
2: खुशी के खबर, हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा। ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से OPD सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी।
3: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार, प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार, नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार, मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आयल बा।
2: ओस्तक सुगर, ब्लड प्रेशर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो संबंधी सक्कु उपचार, पैथोलॉजी लैब सेवा, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ओ और सबको सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमाडौं मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईदी।
3: नोट, ई अस्पतालम कार्यरत सक्कू डाक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज, संपर्क नंबर 081536465 98249808665 वो 98482804465।
4: रंग बहार रंग बहार
5: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियर
4: बर्जर पेंसले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
5: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी रेफ्रिजरेटर वाशिङ मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि।
4: घर रंगाऊ खुशी बढाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ। बर्जर पेंसले

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 1 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज।
1: दाई, धेरै समयदेखि महिनावारी गडबडी, सेतो पानी बग्ने र पेट दुख्ने समस्याले साह्रै दुःख पाएकी छु। कहाँ जाँदा राम्रो होला?
2: म पनि पहिला ग्यास्ट्रिक पाइल्स र पेटको समस्याले धेरै हैरान थिएँ। पछि नेपालगञ्जको मेडिकेयर क्लिनिक गएँ। त्यहाँ महिला र पुरुष दुवैका समस्याको उपचार र अपरेसन एउटै ठाउँमा हुने रहेछ। अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टरबाट सेवा पाएपछि अहिले मलाई धेरै आराम भएको छ।
1: हो र, त्यहाँ के सेवा पाइन्छ त दाइ?
2: सुन, त्यहाँ महिलाहरूका लागि बाँझोपन, सेतो पानी, महिनावारी गडबडी, गर्भवती जाँच, पाठेघर तथा स्तन सम्बन्धी समस्याको उपचार पाइन्छ। र पुरुष तथा अन्य बिरामीहरूका लागि ग्यास्ट्रिक पाइल्स, हर्निया, एपेन्डिक्स, थाइराइड, पित्त थैली, गाँठा गुठी तथा विभिन्न ल्याप्रोस्कोपिक र लेजर सर्जरी सेवा पनि उपलब्ध छ नि।
1: हजुर, मेडिकेयर क्लिनिकमा वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक दूरबीन तथा लेजर सर्जन डाक्टर कमर हसन अन्सारी र वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक स्त्री तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमिरुन निशाले सेवा दिइरहनु भएको छ। तपाईँ पनि आजै कुनै पनि चेक जाँच र अपरेसनका लागि नाम दर्ता गरेर ढुक्क बन्नुहोस्।
2: मेडिकेयर क्लिनिक, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, वडा नम्बर 11, बिपी चोक नजिक उपमहानगरपालिकाको कार्यालय लाइनमा। सम्पर्क नम्बर 97649 11786 र 98224 92377।
3: मेडिकेयर क्लिनिक, महिला र पुरुष दुवैको स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो गन्तव्य।
4: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
5: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना। यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
4: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
5: हाँ, तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी ब्यारेक के सामने, राप्ती रोड, बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
6: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
4: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
5: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा हो रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
5: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
5: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
5: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
5: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेग जानकारी भी करावा जाता है।
4: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ ही जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
5: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो
1: आ रेडियो लिए घूमत हो
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करू
1: तो काकी तू नहीं जाना तो हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आए थे किसी सारे एफएम से दिन के 1 बजे
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत
1: के 1 बजे
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत

हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार। कार्यक्रम चना जोर गरम सुने वाले सब यार दोस्त का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। हाँ तो श्रोताए प्यारा से कार्यक्रम लेके आप लोगन के दुकान मकान खेत खरियान डाल पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर हम पर श्रोता संचालक मियाँ जी प्रादिक माँ जो सदा साथी रहा आज भी हैं हमरे चंदा जी। हाँ तो साथी लगी पे लगाओ तकदीर का आजमाओ जीता जाए प्रेज और ज्योति टेलर से ले जाओ। तो साथी आज के क्वेश्चन जो हम पूछ के उत्तर दिया जी उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जी। तो आप लोग नंबर में जुड़ा जाए 081415 के लिए नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970-81415 के लाइन में आओ जी हमारे देश विदेश पड़ोस भारत के साथी लोग। और श्रोता ये कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलत है आप के प्रिय रेडियो किसी सारे एफ एम 94 जो बाकी जिला नेपाल गंज बारा बिलासपुर से ही प्रसार होते है किसी सारे एफ एम से। हाँ तो साथी मैं आप लोगन के यहाँ सदाबहार एकदम पूरा सदाबहार कव्वाली यानी आज के दिन में रही आपका कव्वाली अगर कोई सुने का है तो आप मैसेज माँ पठवा जी 98155-96-306 माँ फोन लाइन में अभी सहभागी हुआ जी 98155-96-306 में यहाँ सहभागी हुई के आप मैसेज पठाई सका जाते है। और फोन लाइन में भी आए कि क्वेश्चन बताओ जाए अपने मनपसंद के कव्वाली सुने का है तो कव्वाली के नाम फिल्म के नाम यानी गायककार के नाम सब सही बताओ जी तो हम लोग कव्वाली तुरंत है ढूंढ के आपके रेडियो तक ज़रूर पठवा जी। तो साथी आप लोग एकदम तैयार हुआ गवा हुई के बैठा गवा गवा हुई कार्यक्रम जो तमाम श्रोता लोग गाड़ी घोड़ा माँ तमाम अपने ऑटो वगैरह माँ मोटर जीप कार बस माँ तमाम गाड़ी घोड़ा माँ सब कोई लोग सुना थे दुकान माँ खेती खरियाने हमारे किसान लोग भी सही बगिया माँ छाई गर्मी तगड़ा है बगिया माँ रेडियो लगाए मजे से आराम से सोते हैं। तो आप लोग हमारे सवाल के जवाब दिया जी आज की विजेता को बना थे को फर्स्ट आओ थे कि के किस्मत जागा है। तो साथी आप लोग ध्यान से सुना जी एकदम प्यारा कार्यक्रम है जी माँ आप लोगन का एकदम क्वेश्चन के उत्तर दिए परी जैसे पृथ्वी के सूर्य के परिक्रमा करे में कत्ते दिन लागत है एक नंबर में है दुई नंबर में है चंद्रमा के सबसे ऊंच पहाड़ के नाम का है। हाँ तो साथी दोनों का सही बताओ जी जैसे पृथ्वी के परिक्रमा करे में कत्ते दिन लागत है ऐसे चंद्रमा के सबसे ऊंच पहाड़ के नाम का है। हाँ तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जी उत्तर दे वाले साथी का एकदम हम हंसी खुशी के साथ माँ लाखों करोड़ों के बीच माँ आपका पुरस्कार टी शर्ट देवे कहाँ से देवे आप लोगन के माना जाना हुआ ज्योति टेलर जो सदर लाइन वार्ड नंबर 4 माँ है जहाँ हर मेर के लेडीज जेंट्स अड्डा पिस्कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार तमाम मेर के कपड़ा कुशल कारीगर द्वारा सिया बनाए जाते हैं वहाँ से आपका हम टी शर्ट देवे। तो साथी ऐसे हमरे हाँ हाथ में मैसेज भी आ चुका है मैसेज भेजे वाले साथी हैं ये लिखी ने सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है ये जिला बहराइच उत्तर देश प्रदेश जो ई भारत जो ई नवाबगंज अलियाबाद से जो बक्सी गांव से मैसेज भेजी ने इश्तियाक खां जी लिखी ने सबसे पहले मियाँ साहब आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा दिल से अस्सलाम वालेकुम। सामने जो साहब पराब्दिक माँ हुई हैं उनका भी तो सामने पराब्दिक माँ चंदा जी हैं तो कहने कि सब लोगन का तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम करी थे और हमका कव्वाली सुनाई दिया जी भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊँगा खा

0: जी ठीक है, हम आपका कवाली जरूर सुनाई भाई। कहने हम का इश्तियाक खान कहके चिन्हे जाना अले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहित है। तो साथी कोई हमरे फोन लाइन में है, पहले उनका स्वागत कैली। नमस्कार।
1: हेलो मियाँ जी।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार, और सब बढ़िया है?
0: हाँ सब बढ़िया। आपके नाम?
1: अरे आप हमका पहचाना तो हम बहुत मजाकिया आदमी हैं, कीर्ति बहादुर सरदार लांड्री।
0: हाँ हाँ, कीर्ति बहादुर डांगी।
1: समझ गयो?
0: तो डांगी जी तो ना हो तुम?
1: कीर्ति बहादुर डांगी,
0: तुम दोसर वाले मास्टर हो?
1: नहीं,
0: अब तो लेडीज के तना आवाज आवत है।
1: कोई बात नहीं है, लेकिन आपके प्रोग्राम तो चला तो बहुत आनंद आवत है। विश्वास मानो कि अब हम कहा बताए दी, अब मियाँ जी इतना मजा आवत है कि ऐसा लगा था कि हवा चलने लगा था पूरा। आओ सब बढ़िया है?
0: बस आप लोगन की दुआ है।
1: चलो कुछ प्रोग्राम में कुछ है
0: कोई ना? हाँ पुरस्कार है,
1: बताओ।
0: तो क्वेश्चन तो बतावा है,
1: हम ना सुन पाए अभी तो लगा है, प्रोग्राम हमका मालूम रहा है, टाइम पाई है।
0: नेपाली में बताए दी कि हिंदी में कि अवधि में?
1: राज में बता दो, कोई बात नहीं।
0: जैसे
1: इंडिया में बता दो,
0: जैसे पृथ्वी के, पृथ्वी के सूर्य के परिक्रमा करे के कत्ते दिन लागत है ना?
1: चांद का?
0: हाँ, पृथ्वी के सूर्य परिक्रमा करत कत्ते दिन तक लागत है। तो एक नंबर, एक नंबर मा, एक नंबर माँ है, दो नंबर माँ है चंद्रमा के सबसे ऊंच, अगला मैंने ऊंचा पहाड़ के नाम का रहा है?
1: यू नहीं मालूम है, तो विज्ञान के आधार से है और विज्ञान के आधार पर नहीं मालूम है।
0: कोट पैंट और तमाम मेरे स्त्री लगाओ, प्रेस लगा, सब मेरे बहुत जानत हो।
1: नहीं मतलब अभी विज्ञान के आधार नहीं मालूम है, इतना नहीं मतलब विज्ञान है का?
0: तो वही
1: चलो गाना सुना तो कोई बढ़िया, क्या करे?
0: आज गाना नहीं है, आज बीफ है, आज कव्वाली।
1: तो कव्वाली कोई बढ़िया मोहम्मद रफी से सुना है, पुराना कव्वाली।
0: हाँ तो कव्वाली आई, कव्वाली के फरमाइश आ चुका, जिला बहराई से आएगा है मैसेज माँ।
1: अच्छा अच्छा,
0: भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।
1: तो बहुत
0: कीर्ति बहादुर जी।
1: हाँ जी,
0: बहादुर हो कि नहीं हो? अब
1: सब बहादुर है, आप भी बहादुर हो, हम सरकारें बहादुर
0: हैं। नहीं मैंने अब हाउ इसे बहादुर की नहीं
1: है, है, है,
0: है,
1: है,
0: है,
1: है,
0: तो
1: आवत नहीं घूमेगा मैं।
0: आपके नंबरवा कत्ता है?
1: वही तो कुनिया की है, वही तो है।
0: तो नंबर बताओ।
1: हमारा तो नंबर चलत है, यही नंबर हो।
0: तो नंबर हुआ बहुत दूर से आवत है, लाइन में हमरे आवा है, तुम्हारा नंबर हुआ फोन बक्स में है।
1: हाँ तो होइए, तो यही नंबर हुआ हमरे में।
0: तो नंबर
1: पर हमरे सुनो ना, हमरे मोबाइल खराब हो रहा है, तो बिटिया के मोबाइल मतलब इसे लगाई दिए रहन।
0: अच्छा, तो वही वही जगह पर हो, पुराने जगह पर की अंते हो?
1: वही जगह पर।
0: अब उमा कहाँ है?
1: बगल में है ना, उनके नेपाल ज्वेलर्स वाले में ही है।
0: अच्छा, जहाँ घनश्याम चाय वाय बनाता है?
1: हाँ हाँ हाँ, वही में है।
0: अच्छा ठीक है, तो बहनी तो मुलाकात करा जी, या तो आप ही चले आए। वालेकुम सलाम। हाँ साथी, कीर्ति बहादुर दांगी रहा है, जो ये हमरे सरदार लांड्री से हमरे बहुत पुरान सुरता रहा है। तो साथी ऐसे आवाज आए नंबर में सुने कैसी, 4-15 एक से बैस के लाइन में आ जा कहते हैं कि कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलत है, आपे के प्रिय रेडियो किशन सार FM 94 MHz जो वार्ड नंबर 12 बिलासपुर नेपालगंज भाके से चैनल से प्रसार होते है, जो विश्व में आप लोग इका सुना भी जाते है, रेडियो मोबाइल में सुना भी जाते है, इका आप लोग फेसबुक में देखा भी जाते है, इका सुना भी जाए, देखा भी जाए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा जी। तो साथी अब हम चली थे पहले व्यापारी विज्ञापन के बाद में सुना जी प्यारा से कव्वाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। रेडियो से दूर ना जाओ जी, नंबर में यहाँ जुड़े रहा जी, क्वेश्चन के अपन तैयारी करके बैठा जाए। आज के विजेता को होते को नहीं होते तो आपकी किस्मत जाने, मगर रेडियो से दूर ना जाओ जी।
2: दाई धेरै समयदेखि महिनावारी गडबडी, सेतो पानी बग्ने र पेट दुख्ने समस्याले साह्रै दुःख पाएकी छु। कहाँ जाँदा राम्रो होला?
3: म पनि पहिला ग्यास्ट्रिक पाइल्स र पेटको समस्याले धेरै हैरान थिएँ। पछि नेपालगञ्जको मेडिकेयर क्लिनिक गएँ। त्यहाँ महिला र पुरुष दुवैका समस्याको उपचार र अपरेसन एउटै ठाउँमा हुने रहेछ। अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टरबाट सेवा पाएपछि अहिले मलाई धेरै आराम भएको छ।
2: हो र, त्यहाँ के सेवा पाइन्छ त दाइ?
3: सुन, त्यहाँ महिलाहरूका लागि बाँझोपन, सेतो पानी, महिनावारी गडबडी, गर्भवती जाँच, पाठेघर तथा स्तन सम्बन्धी समस्याको उपचार पाइन्छ। र पुरुष तथा अन्य बिरामीहरूका लागि ग्यास्ट्रिक पाइल्स, हर्निया, एपेन्डिक्स, थाइराइड, पित्त थैली, गाँठागुठी तथा विभिन्न ल्याप्रोस्कोपिक र लेजर सर्जरी सेवा पनि उपलब्ध छ नि।
2: हजुर, मेडिकेयर क्लिनिकमा वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक दूरबीन तथा लेजर सर्जन डाक्टर कमर हसन अन्सारी र वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक स्त्री तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमिरुन निशाले सेवा दिइरहनु भएको छ। तपाईँ पनि आजै कुनै पनि चेक जाँच र अपरेशनका लागि नाम दर्ता गरेर ढुक्क बन्नुहोस्।
3: मेडिकेयर क्लिनिक, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, वडा नम्बर 11, बिपी चोक नजिक उपमहानगरपालिकाको कार्यालय लाइनमा। सम्पर्क नम्बर 97639711786 र 98224392377।
4: मेडिकेयर क्लिनिक महिला र पुरुष दुवैको स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो गन्तव्य।
5: समय बदलियो, पुस्ता फेरियो, तर साथ साथ उस्तै छ।

0: हाँ तो श्रोताई, छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, प्यारा से कव्वाली सुनागा, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊँगा खाली। तो इससे आप लोग नंबर में आ जाए, सुने कैसी 415 से 22 के लिए नेपाल के साथी आओ जी, नेपाल से बाहर के साथी 00970-8415-22 के लाइन में आवा जी। कहे से कार्यक्रम जो आप लोगों के घर अंगना दुकान मकान खेत करियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चला था, आप के प्रिय रेडियो किसी सारे पे 94 MHz से चलत है, जो बारा बिलासपुर नेपालगंज बाके से। तो साथी आप लोगों के यहाँ पुरस्कार टी शर्ट दिया जी, कहाँ से दिया जी का आप लोगों का बताए थे, माना जाना हुआ जो ज्योति टेलर है सदर लाइन में, जहाँ सब मेरे के लेडीज जेंट्स अड्डा पीस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट डावरा सलवार कुशल कारीगर द्वारा सिया बनाया जाते हैं, वहाँ से आपका पुरस्कार टी शर्ट दिया जी। तो आज के जैसे क्वेश्चन है हमारे तमाम साथी लोग कहने कि मियाँ जी थोड़ा नेपाली में भी बताए दिया जी, जैसे पृथ्वी ले सूर्य को परिक्रमा करने कति दिन लाग उनसा, एक नंबर में है। दुई नंबर में है चंद्रमा को सबे भंदा अलगो पहाड़ को नाम के हो। हाँ तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जी कि चंद्रमा के सबसे ऊंचा पहाड़ के नाम का रहा है, और जैसे पृथ्वी सूर्य परिक्रमा करत कत्ते दिन लागत है, तो दोनों का सही उत्तर दिया जाए, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार दिया जाए। तो इससे हमारे हाथ में मैसेज आएगा, मैसेज भेजे ने हंसराम साहू भुजई गांव बाके से लिखने, सबसे पहले मियाँ साहेब आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है ये कहने आपके कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं, काम धाम छोड़ के दुकान में एकदम बहुत प्यार प्रेम से आपके कार्यक्रम सुनी था, आपके आवाज़ आपके बोली आपके अंदाज अवधि भाषा थिएटर है आपके एकदम बहुत अच्छा लागत है मियाँ साहेब, धन्यवाद है आपका हंसराम जी। तई कहने हमका कव्वाली सुनाई दिया जाए, हातिम ताई फिल्म के कव्वाली सुनाई दिया जाए, मेरे मालिक मेरे दाता ये मेरे परवरदिगार, ठीक है हम आपका ये कव्वाली सुनेबे। कहने हमका हंसराम साहू कहके चीने जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहिए थे, रेडियो सुने वाले जितने श्रोता देश विदेश नेपाल के जहाँ तक ही कार्यक्रम सुना थे सब लोगन का हम ये कव्वाली सुनावा चाहिए थे, धन्यवाद है। ऐसे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजे वाले हैं, मैसेज भेजी ने नान बाबू पहुना पान भंडार से जो खजुरा बाजार से लिखी ने, सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है, इन्हों कहने कोई प्यारा से कव्वाली सुना दिया जी, जैसे विनोद हैं ऐसे कहने विनय हैं और कहने राजा बाबू हैं और काजल हैं, तमाम मिला का घर परिवार का अपने सब परिवार का सुनाओ चाहिए, अपने साथी भाई लोगन का सुनाओ चाहिए। ऐसे राजू पान वाले जो ही मनकामना चौक जो ही जा वाले खजुरा बाजार से जो पान की दुकान से मैसेज भेजी ने, इन्हों कहने मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है, इन्हों कहने कोई प्यारा से कव्वाली सुना दिया जी, कोई साथी हमारे फोन में है उनका पहले स्वागत कर ली। नमस्कार।
1: हेलो।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: आपके नाम?
1: रतिराम थारू।
0: हाँ,
1: रतिराम थारू।
0: रतिराम की पति राम?
1: रतिराम थारू।
0: रतिराम थारू ना। और रतिराम जी और बढ़िया बा?
1: सब बढ़िया है।
0: हाँ, मिजनी खा सकलो?
1: हाँ खा सकलो। अच्छी
0: का खेलो?
1: का भात खेली आओ का खेलो।
0: आजकल तो घोंघी शिकार तो खूब सहसा बा, जहाँ से मार
1: नहीं
0: खेठो।
1: हाँ नहीं खेठो, नहीं
0: मांस मछली नहीं खेठो ना?
1: खेठो कब कब मने घोंघी नहीं खवास लगा।
0: ये घोंघी नहीं खेठो ना।
1: हाँ।
0: और रतिराम घर कहाँ बा?
1: ये घर रही बैजनाथ गांव पालिका।
0: घर रही हो?
1: हाँ।
0: और घर रही के हाल चाल कैसिन के बा?
1: बढ़िया
0: ही बढ़िया रहा ना। तो मोर कार्यक्रम शुरू से सुन ले बाटो?
1: हाँ
0: तो जो मैं क्वेश्चन सुन ले हूँ उत्तर दे तो।
1: ये पृथ्वी परिक्रमा सूर्य के परिक्रमा करत 365 दिन।
0: हाँ।
1: आधा घंटा लागत। दूसरा लोग क्वेश्चन बावे चंद्रमा सबसे ऊंचा पहाड़ के नाम तो वो है माउंट यूजन।
0: हाँ
1: माउंट यूजन
0: मंस मिजन
1: यूजन यूजन
0: ठीक बा। अब सिख बजे वाला जो कवाली बा के का सुनाई बो
1: सबको रेडियो सेंट प्रोटन
0: अपने घर परिवार
1: अपने घर परिवार के घटना सुनने का सबको प्रोटन
0: अपने छाई छावा बुढ़िया का
1: हाँ सबको
0: कि बुढ़िया छाई छावा ना ही होए
1: बात है नहीं क्या।
0: हाँ रतिराम के तो मैं सुन ले रहूँ एक दर्जन से सही का 13 वटा बावे हाँ मैं तो सुन ले रहा हूँ 13 छाई छावा बाटे हाँ
1: वटा तो ना है मैंने बात है
0: बात है ना 12 गेरा बात है ली राम राम
1: राम राम।
0: हाँ साथी कर रही से रहा है रतिराम थारू तो साथी इससे आवाज आए सुने कैसी 415 एक से बैज के लाइन में आवाज आए कार्यक्रम के क्वेश्चन है उत्तर दिया जाए कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के प्यारा कार्यक्रम है आप के प्रिय रेडियो किसी सारे फिल्म से चलाते तो हम चले थे पहले प्यारा से कव्वाली मेरे मालिक मेरे दाता

0: रंगाउ देश मेरो एवरेस्ट।
1: माया बाबू टेलर के तो सक्कु सामान हो गिल बा, अब मशीन कहाँ से नन्ना हो।
2: छी दादू फिर ठहानी हो कि का उहट हो जे बीएस सिलाई मशीन सप्लायर्स।
1: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर मा कौन कौन मेर के मशीन पैठे हैं बाबू?
2: उहाँ तो अनमोल उषा वो ताज ब्रांड का संग मेर मेरी कंपनी का सिलाई मशीन बिक्री वो मरमत कई जी था। एक रख संग संग मशीन संबंधी सक्कु पाठ पुर्जा वो सामान फे पाजी था। अट्रकेल कहाँ हो कुशल कारीगर हुकन से मरमत फे करा जी था।
3: एक संगे दस्या देवारी हो छठ त्योहार सम 5-30% सम ग्राहक उपकरण के छूट के व्यवस्था कैल बा।
1: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर घरबाई टोल 2 पीपल चौतरा नेपालगंज बाके। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी। प्रोप्राइटर भरत सिंह परियार। मोबाइल नंबर बा 9841828318 और नंबर बा 9824252478। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी।
4: रंग बहार रंग बहार
5: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार।
4: बर्जर पेंट्स ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
5: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टिभी रेफ्रिजरेटर वाशिङ मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि। घर रंगाउ खुशी बढाउ उपहार जित्ने अवसर पाउ।
4: बर्जर पेंट्स।
6: बीर डेंटल
7: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
8: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
7: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
8: फोन नम्बर 081-532-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगंजमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङको फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ एनएमसी 19393 बीडीएस दिल्ली एफएजीसी मणिपाल सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगंजमा।
7: विशेषताहरू दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबीनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
9: सम्पर्क गणपति क्लिनिक सुर्खेत रोड नेपालगंज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
10: ओहो आज डाइह नै मजा लागठो मजासे दवाई करेना कहटु।
11: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइन। पश्चिम नेपालकै अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंजमा मिलत।
10: ए बात त ठिक कैलो साच्ची कि अस्पतालमा का सुविधा मिलत त?
11: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाउ उपचार गर्न सँगे एनआईसीयु, पीआईसीयु, आईसीयु, हाईटेक अपरेशन थिएटर हो। सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पाजाइत। छोट बच्चा हो भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत।
10: ए ओसिनो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह।
11: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमार स्नेह
6: बाबा के कान पिरात है दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई
12: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है इतन कहाँ यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा जीर्ण रोग कान में ढूसी भवा कान खजुआब कान से कम सुनाई देव कान बंद हो बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा कान के जाली में छेद भवा कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है बीटी सीआईसी आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है
6: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो
12: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98-480-2697 98-580-2697 और 98-014-83-697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए

हाँ तो श्रोता, एक छोटा सा व्यापारी विज्ञापन प्यारा से कवाली सुनागा। अब आप लोगों से यही है कि आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुनने कैसी 415-122 के लाइन में आओ जी। नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970-81415-122 के लाइन में आओ जी। हमारे स्टूडियो के घड़ी में 1:59 हो चुका है, यानी 2 बजे वाला है। हम चले थे आपके हाँ व्यापारी विज्ञापन और 2 बजे के टेम चेक के बाद में हम आप फिर मिला जी रेडियो के साथ ही रहा जी।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज।
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताए दियो हमका।
2: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जात है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
2: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037। नींद न आए हमको हाय
1: जग सोना है। भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
3: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। हुआ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
1: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया
3: सुनो। हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यो गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
4: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तह दिल हुआ जाए।
3: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन, उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ, संपर्क नंबर 9749117886982242
5: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
4: हाट जोड़नी विशेष निशुल्क स्वास्थ्य शिविर बस्ने बारे अत्यंत जरूरी सूचना। नेशनल मल्टीकेयर हॉस्पिटल में डॉक्टर सैयद सद्दाम द्वारा हाट जोड़नी विशेष निशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन हुन गइरहेको हुँदा सो अवसर में स्वास्थ्य लाभ लिन हुन सबैमा जानकारी का लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। शिविर बस्ने मिति यही भदौ 27 गते शनिबार, समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म। स्थान नेशनल मल्टीकेयर हॉस्पिटल नेपालगंज। विस्तृत जानकारी का लागि पश्चिम नेपालको पहिलो र एकमात्र हाट जोड्नी विशेष नेशनल मल्टीकेयर हॉस्पिटल नेपालगंज 10 बाँके डिभिजन वन कार्यालय सामुन्ने। सम्पर्क फोन नम्बर 081531386 र 97437990।
6: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगंज।
7: हरेक सामानको खरिदमा 1000 देखि 20000 सम्म छुट, 10 देखि 15 वर्ष सम्मको वारेन्टी, साथै फ्री डेलिभरीको सुविधा पनि। अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
6: स्थान राजा चोक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अगाडि।
7: सम्पर्क 9705118470।
6: सोफा हब नेपालगंज,
7: विश्वासमा नम्बर 1,
6: क्वालिटीमा सबैभन्दा बेस्ट।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो
1: आ रेडियो लिए घूमत हो
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करू
1: तो काकी तू नहीं जाना तो हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे एफएम से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गंगा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृषि सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे किराऊ मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो के सारे एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

0: जनता केबल 5 दशक देखी।
1: विश्व सारे फिल्म लगाए जो हमार पिया, विश्व सारे फिल्म लगाए जो हमार पिया।
2: रेडियो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज, कृष्ण सार जस तेज।

0: हाँ तो सुरताई प्यारा से जो ही आप लोग कार्यक्रम सुनागा नंबर में जुड़ा जाए सुने कैसी 415-122 के लाइन में आ जाए नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970-81-415-122 के लाइन में आ जाए। 2:23 हमारे स्टूडियो के घड़ी में है। अगर आप लोगों के घड़ी मोबाइल गलत है तो रेडियो से मिला भी लिया जी। कोई साथी फोन लाइन में है, देखिए को कहाँ से। नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: आपके नाम?
1: राम किशन लड़े प्रवास।
0: राम किशन
1: आवाज बहुत कमावत है।
0: और बढ़िया है?
1: हाँ सब बढ़िया है, अपन सुनाओ।
0: हाँ ठीक है, क्वेश्चन के उत्तर दियो।
1: पहले हो तो 365 दिन
0: है,
1: 365 दिन 6 घंटा।
0: हाँ
1: और दूसरा हो डालखर किक
0: है,
1: दूसरा हो डार्फल किक।
0: का हुए?
1: डार्फल किक।
0: अच्छा तो अब से बजे वाला जो कवाली है आप किका किका सुनाई हो?
1: अरे रोशन है, राम कुमार है, सच्चू है और हमारे कालावती है। लौकाही के
0: कालावती है?
1: नहीं अपने वहाँ लौकाही वही है, गई है अपने वहाँ समझाने बहुत दूर।
0: ठीक है, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ साथी राम किशन बड़े ही रहा है जो डलई पुरवा से, तो इसे सुने कैसी 415-122 के लाइन में आ जाए। साथी कैसे कार्यक्रम जो आप लोगों के प्यारा कार्यक्रम है, कोई साथी है देखी को कहाँ से।
2: हेलो
0: नमस्कार।
2: नमस्कार,
0: आपके नाम?
2: राम खेलावन थारू जमनी सतपतिया।
0: और राम खेलावन जी
2: सब बढ़िया है? चकाचक है।
0: बा बढ़िया हो चाहिए। कार्यक्रम शुरू से सुना जाता है?
2: हाँ सुना रहा है।
0: कि सुई गे रहा
2: हूँ ना है सुने हन।
0: अब अंगनम का तो बिरवा लाग है पटे दे सुई जाई थे।
2: लाग है सुन।

0: इमरान वारसी कव्वाल एंड पार्टी मुंबई से मोहित भाई की शादी के सिलसिले में ये खूबसूरत सा प्रोग्राम यहाँ मुनक्कद किया गया है रोशनी वारसी जी के साथ मुकाबला। तो मेरा क्या कहना है रोशनी जी से,
1: गोरे गालों की कसम, काले बालों की कसम, और झूठा फोन नंबर देकर जो भागी थी उस हसीना की कसम,

0: रङ्गा हुँदै देश मेरो एभरेस्ट।
1: ओहो, हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त?
2: तपाईँलाई थाहा छैन, नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली।
1: हो र, त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त?
2: एउटै छाता मुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि, जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ, डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंचर पद्धतिबाट ठिक हुने रोगहरू हात खुट्टा नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बाथ रोग, ढाड दुख्ने, मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
1: अनकल सेवाहरू,
2: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ, मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ, हाड जोड्नी, अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ। प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ। प्याथोलोजी, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत, दिसा पिसाब, खकार, थाइराइड, बायोप्सी, कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
3: डाक्टर भेट्ने समय सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 7:30 बजेदेखि 8:50 सम्म, साँझ 5:15 बजेदेखि 7 बजेसम्म, शनिबार र आइतबार बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म, साँझ 3:30 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म।
2: सम्पर्क फोन नम्बर 081-533-719, 98-480-22-229 र 98-605-22-229।
4: सुविसु अपर्च्युनिटी 1900 वार्षिक उत्सवको अवसरमा प्रस्तुत छ सुविसु अपर्च्युनिटी। यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले पाउनुहुनेछ 25 MBPS इन्टरनेट र क्लियर टिभीको फुल HD प्याकेज प्रति महिना मात्र रु 1040 र 65 भन्दा बढी HD च्यानल भएको क्लियर टिभीको प्याकेज प्रति महिना रु 221। साथै दामी म्युजिकको प्रिमियम प्याकेज 3 महिनाका लागि निशुल्क। शर्त र नियमहरू लागु हुनेछ। थप जानकारीका लागि www.subisu.net.np। सुविसु,
5: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास होए, वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
6: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथेन गर्भपतन, परिवार नियोजन के साधन, बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
5: विशेष सुविधा
6: अब हरेक इतवार के दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
7: देर न कीन जाए, आज स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081-530-598।

0: जंजीर को क्यों देखते हो और मेरे पांव की जंजीर को क्यों देखते हो। तुम तो कहते थे मेरी शक्ल से नफरत है तुम्हें, मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर को क्यों देखते हो।
1: छुरी से तीर से तलवार से क्या होने वाला है, हमें तो

हाँ तो साथी अब क्या किया जाए, कार्यक्रम के समय भी धीरे धीरे बढ़ाए लाग है, तो आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुना कैसी 4-15-122 के लाइन जो आप लोग इनके नेपाल के साथी के लिए, नेपाल से बाहर के साथी 009-70-81-415-122 के लाइन में आ जाए। कार्यक्रम के प्रायोजक है जफरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर के। ऐसे हमारे हाथ में मैसेज आएगा है, मैसेज भेजी ने संगम टेलर से, मैसेज भेजी ने कृष्णा परियार जी लिखने। सबसे पहले मियाँ जी नमस्कार, तो नमस्कार है कहने कोई प्यारा से कवाली बजाए दिया जी, हमका कृष्णा परियार के चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का विशेष के सुना चाहिए थे अपने स्टाफ के यहाँ, जैसे मोहम्मद अफरोज खान हैं, सुभाष हैं और तमाम अपने स्टाफ में हैं साथी लोग, जो ग्राहक वर्ग हैं यानी उनका सबका सुनाव चाहिए थे। धन्यवाद है कृष्णा जी। ऐसे दूसर मैसेज है राम कुमार इलेक्ट्रॉनिक वाले जो मोबाइल सेंटर जो ही घर भाई टोल से मैसेज भेजी नहीं हो, कहने मियाँ जी नमस्कार, तो नमस्कार है कहने कोई कार्यक्रम में यहाँ प्यारा से गाना सुना दिया जी। तो राम कुमार जी आज गाना नहीं है, आज कव्वाली है। तो साथी इन्हों कहने की कोई हमका राम कुमार के चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाव चाहते। तो साथी अब हम आज के कार्यक्रम के अब समय भी एकदम धीरे धीरे भगते चला जाते हैं, जैसे स्टूडियो के घड़ी में 2:52 हो चुका है। तो आप लोग भी अब फोन भी करियो, तो फोन भी समय नहीं है साथ दे कव्वाली भी बजाओ परत है वो सब चीज़ है। तो आज के फोन करे वाले साथी रहे कीर्ति बहादुर डांगी रहे जो सरदार लांडरी से, ऐसे हमरे दूसर साथी रहे जैसे रति राम चौधरी रहे गढ़रही से, राम किशन बड़ही रहे डलेपुरवा से, ऐसे राम खिलाओ थारू रहे जमनी सतपुतिया से, भद्रा सिंह सिपाली रहे सी गांव से। तो आज के विजेता भी हैं राम किशन बड़े ही जो डलेपुरवा बाके से, उनका बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो उनका ताड़ी लगाए के हाँ। तो साथी जैसे पृथ्वी के परिक्रमा जैसे 365 दिन रहा है, बहुत सही रहा है। ऐसे जो दोसर रहा है डल्फ्रेन पिक जो रहा है बहुत सही रहा है। तो आपका बहुत बहुत बधाई है राम किशन जी। और ये जो हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ज्योति टेलर के जो पप्पू मास्टर जफरुद्दीन जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीते हैं। और आपका टी शर्ट मिला है अगले हफ्ता में यहाँ, यानी सोमवार मंगल ले आए के अपन पुरस्कार ले जाओ जी। तो ज्योति टेलर के जितने स्टाफ के रहें सब लोगन का बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम का देश दुनिया में पठाइन आइडियो वीडियो में सब हमारे प्रार्थिक माँ साथी हमारे चंदा जी, उनका भी बहुत बहुत बधाई देते और धन्यवाद कहकर प्यारा से कव्वाली के साथ में यहाँ पर श्रोता मियाँ जी विदा ली थे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।

जो घर में सिल पे मसाला तलक ना पीस सके उन्हें ये नाज हमें खाक में मिलाएंगे। कलाई देखो तो चूड़ी का बोझ सह न सके और उस पे दावा के तलवार हम उठाएंगे। फरेब मकर में इनका नहीं कोई सानी, ये जिसको डस ले वो मांगे न उम्र भर पानी। बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी महफिल का, बुलाया जाता है इज्जत बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद वही कत्ल करके आशिक को बड़ी धूम से मैयत उठाई जाती है। खता हमारी है जो हमने उनसे प्यार किया, बुरा किया जो हम

बहन के सर पे दिलेरी का ताज बैठी है, जो घर में थी वो सिंहासन पे आज बैठी है। अगर झुके तो ये दिल क्या है जान भी दे दे, जो सर उठाए तो मर्दों की जान भी ले ले। अगर चे फूल

लिया, रूप सैयारों से मांगा, रंग उषा से लिया, पंखड़ी से ली नजाकत और कलियों से अदा, शाम से काजल लिया और सुबह से गाजा लिया, बिजलियों से कैर मांगा, आग से गुस्सा लिया, हौसला चट्टान से और दर्द पंछी से लिया, आसमां से जुल्म मांगा, सब्र धरती से लिया, शाख से अंगड़ाइयां, झरनों से इठलाना लिया, बुलबुले से नाजुकी, नदी से बलखाना लिया, आईने से हैरतें, तस्वीर से खामोशियां, लहर से अटखेलियां मांगी, पवन से शोखियां, आंख ली हरनी से और शबनम से आंसू ले लिया, बदलियों से जुल्म नजारों से जादू ले लिया, आजवंती से शर्म और रात

0: रंगा उदय देश मेरो एवरेस्ट
1: बीर डेंटल बीर डेंटल बीर डेंटल
2: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
3: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
3: फोन नम्बर 081-532-375।
4: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज, डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
5: सुना जाए आपका, हम बताई थे आप नेपालगंज में ही अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। वहाँ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
4: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
5: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड नेपालगंज बाके, संपर्क नंबर 9844-88-3575 और 9802-825-4037।
6: नींद ना हमको जग सोता
4: है। बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
4: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
7: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे, दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी बैरक के सामने, राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9840-20-697, 9850-23-697 और 9804-83-697।
8: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
4: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
7: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
4: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
7: सुनो, हुआ औरतन के बाँझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यो गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
9: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहदिल हुआ जाए।
7: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97649 11786 98224 92377।
10: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
11: Back to back, back to back.
12: In this song, on
11: stay tuned.

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: समय बदलियो पुस्ता फेरियो तर साथ साथ उस्तै छ

0: बाहर गया जी।
1: विदेश में गया?
0: ये बाहर गया जी।
1: मलसी जी, ससुरानी मां साली लाई आई का ताला जा पे राखो कुकुर पर के का भाम।

0: Buddy? Hey, Buddy! Can you give us money?
1: No,
0: छोड़ो कहाँ को?
1: गांव तीर दूर ना गांव वाला नहीं।
2: गांव तीर दूर ना गांव वाला नहीं।
0: तेरे को ना राम रो अल्लाह सुने अच्छे गांव तीर। सावे ले कुरे का अपने थाली से आके।
1: ती तो ते सारी पौरा ले रही नेर मात्री तो नौ होनी बुड़ा। अब क्यों करने वाला था?
0: क्या ही गांव पार देना? मासंगे ये का मास्टर पिलान था। अब तन्न पेट भरी खाइन्छ आटो र पिठो घरमा बसी बसी कमाइन्छ पैसाको पिठो
3: कसरी

0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि घर रंगाओ खुशी बढाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
0: बर्जर पेन्स
2: यो कृष्णसार एफएम
3: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज